0: wonder what the world's gonna happen to.
1: भी है और मैं दिल्ली इंडिया में रहती हूँ। बॉर्न बे कम्युनिटी रेडियो 95.9 और 98.1 एफएम सुना रहा है आपको पूरी दुनिया सिर्फ www.vobb.org पे।

नमस्ते, मेरा नाम सानवी है और मैं दिल्ली इंडिया में रहती हूँ। बॉर्न बे कम्युनिटी रेडियो 95.9 और 98.1 FM सुना रहा है आपको पूरी दुनिया सिर्फ www.vobb.org पे।